देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाख ले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पे खबर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वानो इलाजुनना ना उम्मीद शु बीमारानो द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासो पखार सवाबई की प्रानिस्त सुविधा कतासु

0: मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03131394941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम
1: रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial.

नई दिल्ली के लिए MEERI माने नई दिल्ली के लिए देव कम्बे नई दिल्ली के लिए बार हाल डेरो ज्यादा मने ना को दिने लावा जिनाब अब्दुल नासर भाई याद खेड़े अब्दुल नासर भाई सिंग है क्या ना ठीक ठाक है प्रोग्राम हो रहे बिगार असर मिलाओ शो ब्याज जिगम दे अब्दुल नासर भाई की खबर याद साते छे कला मिलाओ शी गाना ब्याज खबर हो जिगम दे वार चले ना वार के या बताओ आज कोर्ट तो मोई माना सब वरो का गप लगे 09332804495 अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम खजी वालेकुम अस्सलाम पता नहीं लगी कॉल्स रजी और कॉल मिलाओ शी खबर ही नहीं की गई चिदावली अस्सलाम वालेकुम खजी तो सिलेक्शन दी सॉन्ग एंजॉय कई और लिख दगुरमा चिदा समसला द मुंसरे सही दा

0: जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
1: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू दपारा शारजी तसिंगलार शमा।
1: ओहो पमीना बाजार दुबई की दशारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और दशारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
2: नुद्दा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स, फोन 0938273265।
3: खुश खबरी हगा टोल बीमारान चजचा हडू की माछीवी याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी चिदचा दखपो औ दला सुनो गुतो रगुन बन शिवीरी औ या गुते बेहरकत शिवी औ दचाचे दखपो दकोंडो दनन लाड़ा खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगाटोली जनाना चिदचा खपे औ लासुना सुनकीगी औ हगाटोल मरीजान कमचे दमला दमहरो یاد پټو مریضان وی یاد ماشومان خو پی کگی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یاد نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232

0: राइट आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक।
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की

सोदाचे दिन मुंगा ओवल केप चे दिन अगत तैयार करे दे दमंगा ओवल केप की करे दे कचरी तास रेडियो दिला रिचार्ज चरत ओली वी औ दिन उड़ान दिचा ओवल केप तैयार करे वी नो ज मजरत वाला शायद जक जमात पता नहीं।

दामंगा जमुंग चुकम बेलडोना ऑर्गेनिक फेस वॉश दामंगा ओल केप की तैयार कर दे और दिन अलावा जमुंग चुकम रारवान बेलडोना जाफरानी स्क्रबी फेस वॉश जमुंग रारवान दे दाम ओल केप की मुंग तैयार कर दे रारवान दी वक्त नबाद जमुंग मजीद चुकम बेज रारवान दे बेलडोना विटामिन सी कम फेस वॉश जमुंग रारवान दे अगिल मुंगा बेलडोना विटामिन सी कम फेस वॉश दे द अगि चुकम डिजाइन दे मेटलाइज ओवल केप पाकिस्तान के फर्स्ट टाइम माने सिर्फ और सिर्फ बेलडोना कड़े दे जी नुदा याद ले रही मुंग दे तो यूनिक सीजन रवड़ू मुंग दे चाका पीने को जी दता सोच दे रेडियो दिलारे चा ओवल केप जिक्र कड़ी हुई ताश दे रेडियो दिलारे और दिल मेहरबानी की माता मैसेज राहुल गई और माता जरूर हुआ इसे कुछ मतलब खबर नहीं मानो बखाना वाड़ा मो और अनुभव ची ओली सकुन भाई दिलनशी शर्त लाला मतलब सदी नो दिलनशी द खबर मतलब दार जी द खैर सद दिलनशी जी दोनों को इधर नुशुला आओ लाला जी द खपली ख्वाहिश जेल लाला वाव वाव आईशा वशे द शातु सलाम द शातु औ द गुड़ी औ द चिनोनो खोग हैदर अली मुमंद संग ये खे जो बिल्कुल बराबर मखनूम देने दरा लेगले सो की सोक नहीं दारा तो जरूर हुआ इता सो द वक्त माँ हो रही हो द क्रीम डबे बना गोर सो द क्रीम डबे वक्त पल नीच दी अलाके कम कॉस्मेटिक जनरल मेडिकल स्टोर्स वाले दी अगले बे यो से द क्रीम हो टूल डबे बोर सर ने जमा को वाले जिदीन बाद जमंग पता टूल डबे वाने यो कोरा अंदाजी रवाना दा बेला ड्रावी उस जमुन कोरांदाजी तासु बचे लुई शदे सिदे चे जमुन कोरांदाजी दे सिदा के तासु बद बेलडोना जमुन कम जाफरानी क्रीम दी अगबर आवाली और बेलडोना जाफरानी क्रीमो यो सेट चकम दो सेडुन नकुलावी तासु बयो सेट कुलाव की और दागा यो सेट न बतासु दागा यो सेट बतरे नोशलो हुई चकलम दागा यो सेट तेरे न खैर सर ओशलो लो दी चकम आग सेट बतरे नशलो हुई पकम सेट बाने चिद जिने दो मखुन रागली दुकानदार सर बदा डबे जमा कई आओ कचेरी दुकानदार दल न जमा को लो बदा डबी बने जमंग हेल्पलाइन नंबर रागले दे मंग तब काल रामे लो कई जमंग चुकम नुमाइंदा मौजूद हुई आग बदल जवाब दर खींचे रोले न जमा कई ओ तो जमा कई नोले जमा कई जी दाबर तो जरूर हुए समाडी रुजा तो ग्रानो दरनो खुगो मिनवालो मुंग जिक्र द बेलडोना द प्रोडक्ट्स वाले सर कोलो मुंग डीर ज्यात लुई खवारी कड़ी दा प प्रोडक्शन बाने होता सोस ले द खवारी दा ओकी बाहर रोजे द बेलडोना प्रोडक्ट्स आ लवाले द विख्तो द बार बेलडोना एंटी हेयर फॉल शैम्पू द विख्तो द बार बेलडोना एंटी हेयर फॉल टॉनिक او د دین अलावा द विख्तो بیا خاص کر د विख्तो द मजबूतिया द बार बेलडोना एंटी हेयर फॉल टॉनिक सर सर बेलडोना हेयर किट्स आ ले द निज दी ओ कॉस्मेटिक्स जनरल मेडिकल स्टोर नवाली और लड़की द विख्तो टोले मसले लेके बजान माने पेरियाना रावली दा बोरे टेम लोरे कोई सही इस्तेमाल हुई रिजल्ट बर तख मिला हुई के सही नहीं इस्तेमाल हुई रिजल्ट खाने मिला हुई जी तासुर ते यूज़ले ब्याम दायत गिरने दर कोलो वाला मची मुंगा मौजूद पो बनु की पो लकी नौरंगो डी आई खान की मौजूदगी नंद बेलडोना कॉस्मेटिक पाकिस्तान द दुकानदारों ने ऑर्डर जाता लुए ड्राप बनु की दो वाला द बनु की दगा ड्रांच को मजमू शुरू तो बदे की पिंजा अदद मंग मेहरान मोटर कार दखेर सर और को दिने लावा पदे की पिंजा मोटर साइकिल मंग और को पदे की मंग और को पिंजा द उम्र मुकम्मल पैकेज और को पिंजा आईफोन 17 मंग और को या आईफोन 18 मंग और को जी औ दी सर सर तकसीमो बलहा डीर नामा दो ग्रानो दरनो खगुमिन वालो तासु द लरिए बरिए खैबरिए शनवरिए दगर सरिए जांत बेलडोना जाफरानी क्रीम वाले वाली जदा कोरा अंदाजी दुकानदारानो दूर पसी लसुर जिपस द कस्टमर कुरान दाजी दा रवाना वजे दे गेयु मंग कोपने राठोले उजी द कोपने राठोली गिन मेहरबानी की सांत दिनिस दे कॉस्मेटिक जनरल मेडिकल स्टोर ना बेलडोना जाफरानी क्रीम वाली सही इस्तेमाल की ओ रिजल्ट वाले द मजीद देर जात मालूमात तो बार जमु वेबसाइट www.beladona.com.pk विजिट की ओ दर सर देर मालूमात वाले लाइव कॉल गुरु जमु ससु दिसवेल वाड़ी लाइव कॉलर 0388 150 जमा द स्टूडियो द लाइव कॉल नंबर दोबारा नत दावेल होड़ा मा 0388 150 जमा द स्टूडियो द लाइव कॉल नंबर दे नंबर वाने कॉल मिलो की ओ मुकम्मल मुकम्मल मालूमात सर वाले जी जमुंग सर खबर हो गई 0312 88 150 दा दबानो द सिमी द दुकानदारन लुए ड्रा द बदी के मंग

पिंजा मोटर बोर को पिंजो मोटर कतल दोबारा मेरे बारे 150 हमारे स्टूडियो द लाइफ कॉल नंबर दोबारा नेतावा सिफर दिन सोबारा 88 150 हमारे स्टूडियो द लाइफ कॉल नंबर नंबर वाले कॉल मिलो कि मुकम्मल मुकम्मल मालूम सर वाली जी सर खबर हो गई सिफर दिन सोबारा 88 88 150

27006666. स्वीट लिसनर्स, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि कभी कभी जिंदगी में कोई शख्स इतनी खामोशी से दाखिल होता है या फिर इतनी खामोशी से मतलब जाना मारे हमारे करीब आते हैं, इतनी खामोशी से दाखिल होते हैं कि हमें खुद भी मालूम नहीं होता कि कब उसकी मौजूदगी हमारी आदत बन गई, कब उसकी आवाज हमारे दिन का इंतजार बन गई, कब उसके एक छोटे से पैगाम में हमारी पूरी खुशी समेटने लगी और कब उसके बगैर चलना भी अधूरे अधूरे महसूस होने लगे। इत्तेदा में तो बस बात होती है, फिर बात का इंतजार होने लगता है, फिर इंतजार आदत बन जाता है, फिर आदत जरूरत महसूस होती है और एक दिन जो है ना इंसान को अचानक एहसास होता है कि सामने वाला अब सिर्फ एक शख्स नहीं रहा, वो उसकी जिंदगी के उन खूबसूरत हिस्सों में शामिल हो चुका है जिन्हें इंसान खोना नहीं चाहता। लेकिन यही वो मकाम होता है जहां मोहब्बत के साथ एक अजीब सा खौफ भी जन्म लेता है ना, उसे खोने का खौफ। मेरे प्यारे सामीन, मैं यहां ये बात कहना चाहूंगा कि मोहब्बत में शायद जो है ना दुनिया का वो वाहिद एहसास है जिसमें जो है ना खुशी और खौफ एक साथ चलते हैं। जिस शख्स उसके करीब होना हमें इसी कुर्बत के अंदर कहीं जो है ना एक अनजाना सा डर भी छुपा होता है ना कि अगर ये कुर्बत खत्म हो गई या फिर मतलब जो है ना इसमें कहीं कोई साइलेंस आ गया, कहीं कोई खामोशी। आज जो आवाज हमारी रात का सुकून है, कल खाम क्या होगा? अगर आज जो शख्स हमारी बात पर मतलब या हमारी हर बात पर हंस लेते हैं, हमारी हर बात को समझ जा, रात को महसूस कर लेते हैं, कल हमारी बात सुनने वाला ही ना रहा तो क्या होगा? आज अगर पर मुस्कुराहट आ जाती है, कल वो पैगाम आना बंद हो गया तो शायद जो है ना देखें लिसनर्स, शायद इसीलिए मोहब्बत जितनी गहरी होती है या जितनी गहरी होती जाती दिल इतना ही झना नाजुक हो जाता। आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई इंसान हमें वाकई अजीज होता है तो उसकी नीबी हमारे दिल को फौरन महसूस होने लगती है? पहले अगर जो है ना कोई देर से जवाब देता था तो हम क्या होगा, लेकिन जब वही शख्स हमारे लिए खास बन जाए तो एक छोटी सी सवाल बन जाती है। पहले किसी का लहजा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जब किसी की एक आवाज सुनताब हो या उसी आवाज में मामूली सी उदासी भी हमें परेशान कर देती है, हमें चूर ताहिर जमानी। हाँ, इस बात को अपने माइंड में रखिए। अजीब बात ये ना कि सामने वाला शक नहीं कर रहा, हमारे दिल के अंदर है ना, हमारा दिल अपने ही सवाल है, क्या वो पहले जैसा है, क्या उसे जो है ना अब भी हमारी बात का इंतजार है, क्या हमारी गैर मौजूदगी उसे भी महसूस होती है, फील होती है, क्या वो भी कभी अचानक हमारा नाम सोच, क्या हमारी आवाज उसकी आवाज हमारे लिए खास है। ये सवाल जबान से नहीं निकलते मगर जगह बना लेते। और यहाँ चाहूंगा लिसनर्स की को खोने का खौफ दरअसल जो है ना इस बात का सबूत है कि हमने उसे अपने दिल में कितनी गहराई में मतलब जो है ना एक जगह दी है, क्योंकि जिस शख्स से हमें कोई फर्क ना पड़ता हो ना उसके जाने का खौफ भी नहीं होता। खौफ वहीं पैदा होता है जहाँ कदर होती है, बेचैनी वहीं मतलब जहाँ होती है लिसनर्स, जहाँ इंतजार वहीं होता है जहाँ दिल किसी के साथ जुड़ा होता है और आंखें देखती हैं, जहाँ किसी के आने की उम्मीद बाकी होती है। लेकिन मोहब्बत का ये खौफ सिर्फ जुदाई का खौफ नहीं होता बल्कि किसी ये डर भी हो रहे थे, ये डर भी लग रहे थे लिसनर्स के कहीं वो शख्स बदल ना जाए, कहीं वही बात करने वाला इंसान एक दिन अजनबी सर ना लगे, कहीं वो शख्स जो है ना जो कभी हमारी खामोशी पढ़ लेता था एक दिन हमारी बात सुनने से मतलब जो है ना ग्रहेज ना करने लगे। इंसान को इससे ज्यादा तब्दीली डराती है क्योंकि दूरी में उम्मीद बाकी रहती है कि शायद जो है ना इंसान वापस आ जाए, मगर रवैये की तब्दीली ये सवाल छोड़ देती है कि जो शख्स मेरे सामने है क्या वो वाकई जो है ना वही है जिसे मैं जानता था। और जिना मोहब्बत में सबसे ज्यादा तकलीफ शायद तब होती है जब इंसान किसी को खोना नहीं चाहता मगर जो है ना उसे रोक भी नहीं सकता, रोक भी नहीं पाता। आप किसी के दिल पर जो है ना हुक्म नहीं चला सकते, आप ऑर्डर नहीं दे सकते।

नहीं चला सकते, आप किसी के एहसास को जंजीर नहीं पहना सकते, आप किसी को ये मजबूर नहीं कर सकते कि वो उसी शिद्दत से आपको चाहे जिस शिद्दत से मतलब है ना आप उसे चाहते हैं। इसलिए मोहब्बत के साथ भी इख्तियारी भी आ जाती है जी। इंसान के हाथ में सिर्फ अपना एहसास होता है, दूसरे इंसान का दिल नहीं होता। और कभी कभी हाँ ये बात भी होती है ना लिसनर्स के हम किसी को इसलिए भी खोने से डरते हैं क्योंकि उस शख्स के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। मखसूस जगह, एक मखसूस वक्त, कोई पुरानी गुफ्तगू, कोई हंसी, कोई नाराजगी, कोई मनाने का अंदाज, कोई ऐसा जुमला जो आज भी याद आ जाए तो दिल के अंदर एक हल्की सी रोशनी पैदा हो जाती है। फिर इंसान सोचता है कि अगर ये शख्स ना रहा तो क्या ये यादें काफी होंगी, क्या सिर्फ यादों के सहारे वो कैफियत दोबारा महसूस हो सकेगी। शायद नहीं, क्योंकि यादें इंसान को माजी दिखा सकती हैं मगर माजी के इंसान को वापस नहीं ला सकती। इसलिए किसी के करीब होकर इंसान कभी कभी उसकी छोटी छोटी बातों को भी महफूज करने लगते हैं, उसके बोलने के अंदाज को भी, उसके हंसने के अंदाज को भी मतलब जाना फील करते महसूस करते हैं। नाराज होने पर खामोश हो जाना भी, खुशी में बेसाख्ता बातें करना भी, किसी बात पर अचानक संजीदा हो जाना भी, सब कुछ जहन में कहीं महफूज हो जाता है जी। और इंसान शायद जो है ना जानबूझकर ये सब नहीं करता मगर दिल जानता है कि ये लम्हे कीमती हैं। शायद इसीलिए जब मोहब्बत गहरी हो जाए तो इंसान वक्त को भी गौर से देखने लगता है, बहुत ज्यादा गौर से देखने लगता है। और फिर एक अजीब कैफियत यहाँ ये भी आती है लिसनर्स, में इस कैफियत के हवाले से भी यहाँ ये बात करना चाहूंगा, इस कैफियत के हवाले से भी मैं कहना चाहता हूँ, कैफियत यहाँ ये भी पैदा होती है ना

अच्छा जी, जितने भी हमारे दोस्त अहबाब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मुझे एक एक मैसेज करके बताएं, जो भी उर्दू लवर्स हैं, उर्दू को लाइक करते हैं, हमारा लफ्ज बयां या अंदाजे गुफ्तगु उर्दू में पसंद करते हैं, तो वो एक एक मैसेज करके मुझे बताएं, आंसर्स दें। 0307 270066। आप अगर मुझे अपने होने का एहसास दिलवाएंगे, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और ये महफिल मजीद गहराई में और मजीद खुमारी अंदाज में आगे कंटिन्यू की जाएगी, आगे जारी रखी जाएगी। और यहाँ ये बात भी याद रखिएगा लिसनर्स के और फिर एक अजपंस मौजूद होता है मगर उसके खोने के इम्कान से डरता है, नहीं कि इम्कान से मतलब जहां इंसान चौक जाता है, डर जाता है, वो हंस रहा होता है मगर दिल के किसी कोने में दुआ चल रही होती है, वो बात कर रहा होता है मगर अंदर से चाहता है कि ये गुफ्तगू कभी खत्म ना हो। वो साथ बैठता है या वो मतलब साथ बैठा होता है मगर दिल कहता है काश ये लम्हा जरा और ठहर जाए। शायद मोहब्बत का हुसन भी यही है कि इंसान एक आम लम्हे को भी गैर मामूली समझने लगता है। अगर कभी आपने किसी को सच्चे दिल से चाहा तो आप जानते होंगे कि उस शख्स की मौजूदगी में वक्त की रफ्तार भी अजीब महसूस होती है, चंद घंटे चंद लम्हे बन जाते हैं और चंद मिनट की खामोशी कई घंटों जैसी लगती है। फोन पर बात खत्म करने का वक्त आता है तो दिल चाहता है कि कोई नया मौजू निकल आए, मुलाकात खत्म होने लगती है तो दिल चाहता है कि रास्ता थोड़ा और लंबा हो जाए। रुखसत का लम्हा आता है तो इंसान के अंदर एक छोटी सी ख्वाहिश जाग जाती है, अभी मत जाओ। लिसनर्स कहना चाहूंगा यहाँ पे कि लेकिन कभी हम ये अल्फाज कह नहीं पाते, आना झिझक खौफ हालात हमें रोक लेते हैं, हम कहते हैं ठीक है ठीक हो जाओगे, या हम यूं भी कहते हैं कि ठीक है जाओ, जबकि दिल कहते हैं कि थोड़ी देर और रुक जाओ, हम कहते हैं कोई बात नहीं, जबकि अंदर बहुत कुछ टूट रहा होता है, हम कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, जबकि हकीकत ये होती है कि सबसे ज्यादा फर्क उसी शख्स की बातों से पड़ता है। और शायद मोहब्बत का सबसे खामोश दुख यही है कि इंसान अपने सबसे बड़े खौफ को भी छुपा लेता है, वो किसी को ये नहीं बताता कि मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है, क्योंकि उसे खौफ होता है कि कहीं सामने वाला इस एतराफ को कमजोरी ना समझ ले, कहीं वो ये ना सोचे कि मैं बहुत ज्यादा वाबस्ता हो गया हूँ, कहीं वो एहसास की कदर करने के बजाय उसे मामूली ना समझ ले। इसलिए इंसान अपने दिल की सबसे सच्ची बात को भी कई मरतबा खामोशी में दफन कर लेते हैं, कई मरतबा खामोशी का लिबादा दे देते हैं। लेकिन मैं मेरे अजीज दोस्तों मेरे सामने यहाँ ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि किसी को खोने का खौफ हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी यूं भी होता है लिसनर्स के,

अच्छा लिसनर्स, तो मैं क्या बात कर रहा था, बीच में स्टूडियो में कुछ थोड़ी सी वो क्या कहते होते हैं, आप लोग अच्छे से मतलब जानते होंगे कि होम स्टूडियो बंदा जब अपने होम स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम कर रहा हो तो बीच में ये मसले मसाइल चलते रहते हैं। खैर, आप लोगों ने इन चीजों पे दिल बर्दाश्त नहीं होना, आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं और अपने होने का एहसास मुझे दिलवा सकते हैं। लेकिन मेरे अजीज सामीन, किसी को खोने का खौफ हमेशा, हम किस मौजू के हवाले से बात कर रहे थे? खैर, मौजू की तरफ आते हैं। मैं इस हवाले से बात कर रहा था कि किसी को खोने का खौफ हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी ये इस बात का या इस बात की भी इलामत होता है कि इंसान ने पहली मरतबा किसी को पूरी सच्चाई के साथ अपने करीब आने दिया, जिसने हमेशा खुद को मजबूत रखा हो। जब वो किसी के सामने अपना दिल खोलता है तो कुदरती तौर पर उसे डर महसूस होता है, क्योंकि अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं रहता, और अब सामने वाले की खुशी उसकी खुशी बन जाती है, उसकी नाराजगी अपनी परेशानी बन जाती है, उसकी खामोशी बेचैनी बन जाती है। मगर यहाँ एक बारीक सा फर्क है, एक हल्का सा फर्क है। मोहब्बत और खौफ को एक दूसरे का कैदी नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी को खोने का खौफ इतना बढ़ जाए कि हम उसकी हर हरकत पर नजर रखेंगे, या मतलब ये ना कि उसकी हर हरकत पर नजर रखने लग जाएं, हर खामोशी का मतलब निकालने लगें, हर मसरूफियत को बेरुखी समझने लगें, तो फिर मोहब्बत सुकून देने के बजाय थका देने लगती है। और मोहब्बत में खुरबत जरूरी है, मगर एतमाद इससे भी ज्यादा जरूरी है। भरोसे का होना, एतमाद का होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को अपने करीब रखना खूबसूरत है, लेकिन उसे अपने खौफ के अंदर कैद करना खूबसूरत नहीं है, ये बेहतरीन नहीं है। अच्छा, यहाँ ये बात भी मेरे जहन में आ रही है जी, कि सच्ची मोहब्बत शायद जो है ना, ये सीखने का नाम है कि जिससे हम चाहते हैं उसे हर लम्हा पकड़ कर रखने के बजाय उस पर भरोसा करें, उस पर एतमाद करें, उसे ये एहसास दें कि तुम मेरे लिए जो है ना अहम हो, इम्पोर्टेंट हो, मगर मैं तुम्हारी आज़ादी का भी एहतराम करता हूँ। उसे बताएं कि तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए जो है ना खुशी है, मगर मैं तुम्हें अपने खौफ का बोझ नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मोहब्बत वो नहीं है जो दूसरे इंसान को सांस लेने ना दे, मोहब्बत वो है जिसमें दो लोग एक दूसरे के करीब रहकर भी जो है ना खुद को महफूज महसूस करें या महसूस बेहतरीन कर पाए। और यहाँ एक और बात भी आती है लिसनर्स, जो कि मेरे माइंड में आ रही है अभी, और अगर कभी आपको किसी के खोने का खौफ महसूस हो तो अपने दिल से एक सवाल जरूर कीजिएगा, क्या मैं उस शख्स को खोने से डर रहा हूँ, या मैं अपने अंदर पैदा होने वाली इस खूबसूरत कैफियत को खोने से डर रहा हूँ। शायद जो है ना जवाब आपको अपने बारे में बहुत कुछ बता दीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम इंसान के साथ साथ अपनी वो दुनिया भी खोने से डरते हैं जो उस इंसान के साथ जो है ना बनाई होती है हम लोगों ने। देखें, एक दुनिया जिस जो है ना किसी के पैगाम के इंतजार होता है, किसी की आवाज का सुकून होता है, किसी के नाम से मुस्कुराहट आती है, किसी की नाराजगी परेशान करती है, किसी की खुशी दिल को सुकून देती है, फिर लाइक जो है ना खुश कर देती है, और किसी की उदास

इंसान को आपकी मौजूदगी का एहसास हो जाए कि आप मौजूद हैं भाई। और जो लोग जो है ना हमेशा खामोश रहते हैं उनसे भी आज एक छोटी सी गुजारिश है मेरी कि सिर्फ सुनकर गुजारा न करें आप, या मतलब सुनकर गुजरना जाया करें आप। कभी अपनी जिंदगी में या कभी अपनी मौजूदगी के हवाले से भी जो है ना अपना एक एहसास दिलवाया करें, कभी अपनी मौजूदगी की एक छोटी सी दस्तक भी दे दिया करें। क्योंकि हमें आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा, हमें मालूम नहीं होता कि इस वक्त रेडियो के साथ कौन बैठा है, लेकिन आपका पैगाम आता है तो हमें मतलब जो है ना एक चीज महसूस होती है कि आप मौजूद हैं। आपका नाम इस पूरी आवाज को एक इंसान से जोड़ देते हैं, एक पैगाम इस फासले को कम कर देते हैं, एक छोटा सा जवाब ये एहसास दिला देते हैं कि ये रात अहम है और इस रात हम अकेले नहीं हैं, ये रात हम जो है ना अकेले नहीं गुजार रहे हैं।

कॉन्सोलेशंस 0307 270066, 0307 27 00666, 0307 27 00666. साथ साथ में आप लोगों के पैगामात भी पढ़ता चलता हूँ और ये कि यहाँ पे मैसेजेस भी मैं आप लोगों के शामिल करता हूँ। अच्छा जी, हाँ ये लिखते हैं कि ये दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, दूर रहकर भी दिल के करीब होते हैं। मैविश हमारे साथ दे रही है अटक से, बहुत बहुत शुक्रिया अटक से, आपने हमारे साथ दिया जी। अटक कौन से एरिया से आप सुन रहे हैं ये भी जरा अगर मुझे आप बता देते तो ये अच्छा रहता। सलाम भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शहजाद हमारे साथ दे रहे हैं फ्रॉम कलाबट जी, बहुत बहुत शुक्रिया कलाबट से आपने हमारे साथ दिया। और इसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम हिलाल हमारे साथ दे रहे हैं जी। हिलाल आपने जगह का नाम नहीं लिखा, अगर आप ये लिख देते तो ये बेहतर रहता। कैसे हैं आप? ठीक हैं, आवाज ओके है जी। मोहम्मद उस्मान हमारे साथ दे रहे हैं शामनसूर से, शुक्रिया उस्मान भाई शामनसूर से हमारे साथ देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। मैं कौन शो के बाद बताऊंगी, लेकिन आप जरूर रिप्लाई कर दीजिएगा। मेरे पास पैकेज नहीं है जी, मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैं रिप्लाई नहीं कर सकता और गरीब से बंदा हूँ, पैकेज वगैरह नहीं लिखवाता होता आप लोगों की तरह। सलाम जी, वालेकुम सलाम, हम जाके आपकी आवाज सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। फरियाल हमारे साथ दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फरियाल। उर्दू पोएट्री भी जरूर शामिल कीजिएगा जी। सना ने अगेन से हमारे साथ दिया है, शुक्रिया सना। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम हम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इन्होंने शिवा अड़ा से हमारे साथ दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा अड़ा से मैसेज करने के लिए। आवाज बिल्कुल सफा आ रही है, मतलब ये कि क्लियर क्लीन एंड क्रिस्टल आ रही है। शुक्रिया जी, ये किसने मैसेज दिया है, नाम इन्होंने नहीं लिखा, बराए करम अगर आप नाम लिख देते बराए मेहरबानी। जब भी कोई अगर मैसेज करता है तो अपने नाम के साथ मैसेज किया करें। भाई सासो पा खबर के डेर असर मजड़ो इंसान तजकम देनो खुशहाल और तजकम देनो डेर इंतजार का माओ सासो प्रोग्राम और डेर मनाना। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू कि आपने हमारे साथ दिया, आपने भी नाम नहीं लिखा। अगला मैसेज शामिल करते हैं जी, ये किसका है? मेरे लिए लैंग्वेजेस मैटर नहीं करती, आप उर्दू बोलें या पश्तो बोलें, आपकी आवाज आपका लहजा इतना स्वीट है कि आप जिस जबान में भी बोलते हैं वही जबान हमें अच्छी लगती है। आपकी आवाज सुनकर दिल को सुकून मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, नाम नहीं लिखा आपने भी। ये आप नाम क्यों नहीं लिख रहे भाई, नाम क्यों नहीं लिख रहे आप? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ताहिर जमान, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मेरे लिए एक पोएट्री हो जाए, मेरे लिए एक शेर जो है ना शामिल कर दें आप। माहा हमारे साथ दे रही हैं अगेन अंबार से जी, बहुत बहुत शुक्रिया माहा। भैया जहुम गंदन प्रोग्राम और मो हो भाई जड़ में सम डेर खफद है, पता राता न लगी चे पस खफद है, हो सम डेर जैच कमदन खपा दे दीदी जिनको जड़ो असम कमदन खपा हर वक्त कमदन खपा खपाई दीदी जड़ो जमदन न खुशहाली। हाय भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? प्रोग्राम अच्छा है जी, मजेदार है और माशाल्लाह आपका लबुल लहजा भी बहुत ही जबरदस्त है। इबाद हमारा साथ दे रहे हैं अगेन से, बहुत बहुत शुक्रिया इबाद आपने हमारा साथ दिया। भाई जान हम खामोश नहीं हैं, बट क्या करें, आपको पता है या पता ही होगा कि रात यादों में कैसी गुजरती है, लेकिन आपके शो में एक बात है कि दिल को सुकून मिल जाता है। अच्छा, आप लोग भी सुकून मतलब जहाँ सुकून से सुनते हैं और सुकून की तलाश में हैं। हाँ

हाय मैं आप पे सदके जावा। ये कौन सदके जा रहा है भाई मेरे पे? आप मेरे ऊपर सदके ना जाएं, बल्कि ये है कि आप अपने आप से सदके जाएं, अपने खुद से सदके जाएं। मेरे ऊपर मतलब जाना, मैं आपका कौन लगता हूँ कि आप मेरे ऊपर सदके जा रही हैं? हाँ अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो कहिएगा, दिल की बात दिल में ना रखिएगा, ठीक है ना? दिल की बात कह दीजिएगा। डिसेंट गर्ल हमारा साथ दे रही है, बहुत बहुत शुक्रिया डिसेंट गर्ल, शुक्र है कि आपने सिंपल टेक्स्ट भी किया। वैसे आप व्हाट्सएप पे भी बहुत ज्यादा मतलब जो है ना एक्टिव दिखती हैं, एक्टिव मतलब जो है ना दिखाई देती हैं। अच्छा, अगर मरियम प्रिंसिपल भी मेरी आवाज सुन रही है, प्रिंसिपल है जिन्हें, तो वो भी मुझे अपने होने का एहसास दिलवाएं कि वो भी हमारे साथ हैं, एक मैसेज करके मुझे बताएं। और व्हाट्सएप पे जो मतलब मुझे रेगुलरली टेक्स्ट करते हैं या रेगुलरली मैसेजेस करते रहते हैं, तो वो सिंपल टेक्स्ट पे आएं, ठीक है ना? सिंपल टेक्स्ट पे आएं और सिंपल टेक्स्ट पे आके अपने होने के एहसास मुझे दिलवाएं कि वो मेरे साथ साथ है, मेरे संग संग है। नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पे लिख लें आप अपने पास, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। 0307 27 00 666, अगेन से बताना चाहूंगा, 0307 27 00 666, 0307 27 00 666।

लिसनर्स, मेरे मोहतरमे, मेरे प्यारे, मेरे मीठे लिसनर्स, मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, मेरे मोहतरमे, मेरे प्यारे और दिल के करीब सामीन, एक मरतबा फिर तह दिल से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम। आज के प्रोग्राम मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे और

गुजर चुका है। सुकून के हवाले से अगर मैं बात करूं लिसनर्स, तो शायद सुकून सिर्फ जो अल्फाज में नहीं होता, सुकून उस एहसास में होता है जो इन लफ्जों के पीछे छुपा होता है। आप सुकून के हवाले से बात करते हैं ना, जो इन अल्फाज के पीछे मतलब सॉरी माजरत, जो इन अल्फाज के पीछे छुपा होता है। एक ही जुमला दो लोग बोल सकते हैं, अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन एक शख्स की बात दिल को छू जाती है, एक शख्स की बात दिल को छू नहीं जाती है, और दूसरी की बात शायद वहीं खत्म हो जाती है जहां से शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ अल्फाज नहीं सुनता, इंसान लहजा भी सुनता है, इंसान लहजे को भी महसूस करता है, नीयत भी महसूस करता है, खलूस में पहचानता है, आवाज के अंदर छुपी कैफियत को भी महसूस करता है। कभी कभी कोई शख्स जो है ना, हमें ये नहीं कहता कि फिक्र ना करो, लेकिन उसका बात करने का अंदाज ही हमें यकीन दिला देता है कि सब ठीक हो जाएगा। कभी कोई लंबी नसीहत नहीं होती, बस दो मिनट हमारे साथ बैठता है, हमारी बात सुनता है, दरमियान में हमें टोकता नहीं है, हमारी कैफियत को समझने की कोशिश करता है, और हमें महसूस होता है कि हाँ कोई है जो हमारी बेवजह जो है ना कदर करता है, कोई है जो मुझे समझ रहा है। और शायद यही वो मकाम होता है जहां बातों में तासीर पैदा होती है, जब बोलने वाला सिर्फ बोल नहीं रहा होता बल्कि महसूस करके बोल रहा होता है, जब अल्फाज सिर्फ जबान से नहीं निकलते बल्कि तजर्बे, एहसास, खलूस और दर्द से निकलते हैं, या दर्द से गुजर कर निकलते हैं। क्योंकि जिस इंसान ने खुद तन्हाई देखी हो, उसे तन्हा इंसान की खामोशी समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है। जिसने इंतजार किया हो, वो इंतजार की कैफियत को जानता है। जिसने किसी को खोने का खौफ महसूस किया हो, वो किसी दूसरे के खौफ को मजाक नहीं समझता। और शायद यही वजह है कि बाज़ बातें सीधा दिल पर असर करती हैं, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ अल्फाज नहीं होते, इनके अंदर एक गुजरा हुआ एहसास भी शामिल होता है।

और एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स के, कभी कभी आप लोगों ने ये चीज भी महसूस की होगी, ये भी महसूस किया होगा कि बात करते करते मेरे अल्फाज जरा लड़खड़ा जाते हैं, जबान एक लम्हे के लिए रुक जाती है, जुमला मुकम्मल होते होते टूटने लगते हैं, कभी कोई लफ्ज आगे नहीं बढ़ता और कभी महसूस होता है जैसे आवाज के अंदर ही कोई एहसास आकर ठहर गया हो। तो क्या ये कमजोरी है? क्या ये बात करने के क्या अंदाज में मतलब है ना, या बात करने का अंदाज है? नहीं, कभी कभी ये इस बात की भी अलामत होती है कि इंसान जो कह रहा है उसे सिर्फ जबान अदा नहीं कर रही, जबान नहीं कह रही, बल्कि दिल से महसूस भी इंसान कर रहा होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे मेरे स्वीट लिसनर्स, बनावटी बातें अक्सर बहुत आसानी से अदा हो जाती हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई वजन नहीं होता, कोई कैफियत नहीं होती, कोई अंदरूनी कश्मकश नहीं होती। इंसान ने जो बात सिर्फ दिखावे के लिए बनाई हो वो बड़ी रवानी से कह देता है, लेकिन जब बात दिल की गहराई से निकल रही हो, जब लफ्ज के साथ एहसास भी जुड़ा हो ना, अल्फाज के साथ एहसास भी जुड़ा हो, जब बोलने वाला खुद अपनी कही हुई बात के अंदर से गुजर रहा हो, तो कभी कभी जबान भी दिल की रफ्तार के साथ नहीं चल पाती, लफ्ज रुक जाते हैं।

सांस एक लम्हे को ठहर जाती है और आवाज बता देती है कि यहाँ सिर्फ गुफ्तगू नहीं हो रही, यहाँ एहसास बोल रहे हैं। शायद इसलिए बाज़ औक़ात मेरी बात में ठहराव आ जाता है, कोई लफ्ज दोबारा कहना पड़ता है, कोई जुमला मुकम्मल करने में एक लम्हा ज्यादा लग जाता है, लेकिन मेरे लिए वो रिकॉर्ड नहीं, वो मेरे फिर एहसास का हिस्सा है, क्योंकि मैं आपसे कोई लिखी हुई खूबसूरत तहरीर या कहानी सिर्फ पढ़कर नहीं सुना रहा था, मैं आपसे बात करता हूँ और बात करते हुए ना बात करते हुए दिल कभी कभी अपनी रफ्तार खुद तय करता है। और मेरे प्यारे सामीन, मेरे स्वीट सामीन, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि और मेरे मोहतरम सामीन, इंसान की असल खूबसूरती शायद यही है कि वो हर वक्त मुकम्मल बेऐब और मस्नूई अंदाज में बात नहीं करता, कभी आवाज भर जाती है, कभी हंसी के पीछे उदासी छुप जाती है, कभी एक मामूली सा लफ्ज या कभी एक मामूली सा जुमला कहते हुए आंखें नम हो जाती हैं, और कभी बहुत कुछ कहना हो तो जबान खामोश हो जाती है। ये सब इंसानी एहसास हैं लिसनर्स, और शायद यही वो कैफियतें हैं, शायद यही कैफियतें हैं किसी आवाज को सिर्फ आवाज नहीं रहने देती, उसे एहसास भी बना देती हैं। तो अगर कभी आपको लगे कि मेरे अल्फाज बोलते बोलते रुक गए, अगर कभी कोई जुमला टूट गया, अगर कोई बात, अगर कभी आवाज में एक लम्हे की खामोशी आ गई, तो इसे कमजोरी ना समझिएगा, शायद जो है ना शायद उस लम्हे में अल्फाज ज्यादा कुछ बोल रहा हूँ, शायद वो चीज जिसे मैं बयान करना चाहता हूँ उसे जबान से ज्यादा दिल महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हर एहसास को खूबसूरत अल्फाज नहीं मिलते, बस एहसास सिर्फ एक खामोशी मांगते हैं, एक ठहरा हुआ लम्हा मांगते हैं, और कभी कभी एक लड़खड़ाता हुआ लफ्ज पूरी तकदीर से ज्यादा सच बोल जाता है। और शायद यही फर्क है बनावटी और सच्चाई में, बनावट को अल्फाज की जरूरत होती है, सच्चाई को सिर्फ एहसास की, बनावटी बातें खूबसूरत तरतीब से अदा हो जाती है, लेकिन सच्ची बात कभी कभी टूटे हुए जुमले में भी दिल तक पहुंच जाती है। इसलिए अगर मेरी गुफ्तगू में कभी कोई लफ्ज ठहर जाए, कभी जबान रुक जाए, कभी आवाज जरा बदल जाए, इससे मेरी कमजोरी नहीं, मेरी इंसानियत समझिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने सिर्फ बोल नहीं रहा होता, मैं आपके साथ अपने एहसास भी बांट रहा होता हूँ। मैं लिसनर्स कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अच्छा कुछ पैगामात को भी ऐड कर देते हैं, कौन कौन हमारे साथ दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से। अरे भाई मुझे टाइम का वक्त का पता ही नहीं, वक्त टाइम, अगर टाइम भी मैं स्टार्ट हो गया तो सारे के सारा ये जितना भी कंटेंट है या जितना भी लाइक जो है ना प्रोग्राम है ये टाइम पे वक्त पे गुजर जाएगा। ये एक जुदा सब्जेक्ट है, चैप्टर है, टॉपिक है, मौजू है, इस पे जितनी भी कोई गुफ्तगू की जाए कम है।

उनको प्यार करते हैं। ऑलराइट जी, एक मरतबा फिर मैं ताहिर आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। मेरे प्यारे सामीन, स्वीट लिसनर्स, टाइम का वक्त का मुझे पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी जिंदगी को आज की उस रात के आसमान पर एक या उस रात के आसमान पर एक फिल्म की तरह चलता हुआ देखिए। कहीं बहुत दूर कोई सितारा खामोशी से चमक रहा है, कहीं चांद बादलों के पीछे छुपा है, कहीं चांद बादलों के पीछे छुपता और फिर नमूदार होता है। हवा दरख्तों के पत्तों को छू कर गुजर रही है, रात अपने स्याह दामन में पूरी दुनिया को समेट रही है और इस वसीओ अर्ज कायनात में या इस वसीओ अर्ज कायनात के किसी एक छोटे से कोने में आप बैठे हैं खामोश, अपने ख्यालात के साथ, अपनी यादों के साथ, अपनी जिंदगी के उन तमाम लम्हों के साथ जिन्हें आपने कभी किसी को बताया, कुछ को छुपा लिया, कुछ को हंसते हुए टाल दिया और कुछ को अपने दिल के अंदर इतनी गहराई में दफन कर दिया कि शायद आप खुद भी कभी वहां दोबारा जाना नहीं चाहते। लेकिन जिंदगी अजीब है, ये इंसान को बार बार उसी जगह ले जाती है जहां से वो भागना चाहता है। कभी किसी गाने की आवाज में, कभी किसी खुशबू में, कभी किसी रास्ते पर, कभी किसी किस नाम में, कभी किसी किसकी लहजे में और कभी रात की इस खामोशी में अचानक माजी का कोई दरवाजा खुल जाता है और फिर इंसान हाल में बैठा हुआ भी माजी के किसी लम्हे में पहुंच जाता है। वही चेहरा, वही आवाज, वही इंतजार, वही मुलाकात, वही जुदाई, वही वादे, वही ख्वाब, सब कुछ जैसे अभी अभी हुआ हो। जिंदगी की एक बात याद रखिएगा कि जिंदगी किसी सीधी लकीर का नाम नहीं है। एक ऐसी राह है जिसमें कभी रास्ता हमवार होता है और कभी पत्थर कदमों को जख्मी कर देते हैं। कभी इंसान पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है और उसे लगता है कि दुनिया उसके कदमों के नीचे है, और कभी वही इंसान एक ऐसी वादी में उतर जाता है जहां उसे अपने सिवा कोई दिखाई नहीं देता। कभी कामयाबी इंसान को अपने बाजुओं में ले लेती है, कभी नाकामी उसे जमीन पर बिठा देती है, कभी जेब में वसाइल कम होते हैं मगर दिल उम्मीद से भरा होता है, और कभी सब कुछ पास होने के बावजूद दिल के अंदर एक अजीब सी खाली जगह रह जाती है। कुछ लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख देखते हैं, इतना ज्यादा कि दुख उनके लिए कोई नया लफ्ज नहीं रहता बल्कि एक पुराना शनासा बन जाता है। वो दर्द को पहचानने लगते हैं, उन्हें मालूम होता है कि किस मुस्कुराहट के पीछे आंसू हैं, किस खामोशी में चीख छुपी हुई है, किस में ठीक हूं कि अंदर जो है ना पूरी दुनिया टूटी हुई है। ऐसे लोग जब किसी दूसरे के चेहरे पर उदासी देखते हैं तो एक बात ऐसे लोग लिसन्स

ऐसे लोग जब किसी के चेहरे पर उदासी देखते हैं, किसी दूसरे के चेहरे पर उदासी देखते हैं, तो सवाल कम करते हैं और करीब ज्यादा आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हर जख्म की तफसील पूछना जरूरी नहीं होता, हर चीज की एक्सप्लेनेशन जो है ना ये जरूरी नहीं होती, हर चीज एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती, कुछ चीजें महसूस करनी पड़ती हैं। बाज जख्मों के पास सिर्फ खामोशी से बैठना पड़ता है।

0: अच्छा जी, एक मैसेज करके मुझे बताएं कि आप मेरे साथ मौजूद हैं। टाइम कम है जी, 03 07 27 00 666, 0307
1: वो भी अपने
0: 27 00 666। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिलाल हमारा साथ दे रहे हैं सवाबी से, अगेन से इन्होंने मैसेज किया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। रानी हमारा साथ दे रही हैं सवाबी से, बहुत बहुत शुक्रिया रानी, थैंक यू सो मच। सलाम भाई जान, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? ठीक हो? आयजा कैसी? आयजा भी ठीक है जी। और यूसरा हमारे साथ दे रही हैं पिशावर से, बहुत बहुत शुक्रिया यूसरा। सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। शहजाद हमारे साथ दे रहे हैं अगेन कलावट से, और बहुत ज्यादा सलाम आपने किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? शहजाद अली हमारे साथ दे रहे हैं पाक आर्मी से, कह रहे हैं कि शो इज नाइस, आपको सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक बहनाम से मैसेज आया जी, इसमें सिर्फ हाय का एक मैसेज लिखा हुआ है। अच्छा, सिंपल टेक्स्ट पे इसलिए आई हूँ कि आप तो सिर्फ जहना उनको याद करते हैं जो आपको मैसेज करते हैं, इसलिए हमें खुद ही अपनी याद दिलवानी पड़ती है, अपना एहसास दिलवाना पड़ता है। कुछ बातों पे मतलब जो है ना, इस तरह होता है ना कि कुछ बातों पे, कुछ लफ्जों पे खामोश होना पड़ता है, और खामोशी बेटर होती है, बेहतरीन होती है। बिस्मा हमारे साथ दे रही हैं जी रुस्तम से, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मा, थैंक यू। और सलाम सर, वालेकुम सलाम, बहुत खूबसूरत है आपका प्रोग्राम और आपकी बातें इतनी खूबसूरत हैं कि मैं कह नहीं सकती। और यहाँ ये लिखते हैं कि कभी कभी इंसान किसको रोकना छोड़ देता है, इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं रहती, बल्कि इसलिए कि वो समझ जाता है कि मोहब्बत जबरदस्ती का नाम नहीं है, जिसे हम अपनी चाहत में कुछ कामों से मना करते हैं। एक वक्त आता है जब थक कर कह देते हैं कि जाओ अब तुम आजाद हो, जो दिल चाहे करो, मगर इस आजादी के पीछे कितनी बेबसी, कितनी खामोश तकलीफ और कितने टूटे हुए अरमान छुपे होते हैं। ये सिर्फ वही जानता है जिसने किसी को दिल से चाहा हो। हमने तो सिर्फ तुम्हें खोने के डर से रोका था, मगर जब तुम्हें हमारी बातों की समझ नहीं आई, हमारी बातें बोझ लगने लगी, तो खामोशी इख्तियार कर ली। अब ना कोई रोक टोक होगी, ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, बस दिल में एक खामोश सा दर्द रहेगा कि कभी तुम्हें हमारी हर बात अजीज थी और आज हमारी खामोशी भी तुम्हें महसूस नहीं होती। एमटी हमारे साथ दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एमटी, थैंक यू सो मच, आपने अपने एहसास, अपने जज्बात हमारे साथ शेयर किए। अच्छा जी, अल्लाह गवाह है कि मैं आपकी बातें सुन भी रही हूँ और साथ साथ मैं रो भी रही हूँ। जऊर खान हमारे साथ दे रहे हैं सवाबी से, बहुत बहुत शुक्रिया जऊर खान, आपने हमारे साथ दिया। और सलाम भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। रानी हमारे साथ दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, हम मौजूद हैं आपके साथ और हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। और किसी को राज मत कहना, अगर दुनिया में रहना है तो ये दुनिया खूब तमाशा है, तुझे बदनाम कर देगी। शुक्रिया जी, थैंक यू। और नेक्स्ट हमारे साथ कौन दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, महा अंबार से अगेन हमारे साथ दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया महा। अच्छा जी, नेक्स्ट कासिम हमारे साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम, आपने हमारे साथ दिया। अच्छा जी, इस मैसेज की मुझे समझ नहीं आई। शगुफ्ता हमारे साथ दे रही हैं, शगुफ्ता ने चार सदस्य, बहुत बहुत शुक्रिया शगुफ्ता, चार सदस्य हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, और चार सदस्य आप शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं आप लोगों के लिए एक ट्रैक शामिल करना चाहता हूँ जी, एक कवर ट्रैक है

अच्छा ये नूर जहान की आवाज में, मतलब नूर जहान ने इस ट्रैक को गाया था पहले, और आजकल आपको पता है कि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, एआई आई है, एआई के बाद जो है ना ट्रैक्स काफी चेंज हो चुके हैं और बहुत ज्यादा मतलब जो है ना ट्रैक्स में चेंजिंग आ गई है। इसे आप ये मत समझिएगा कि ये कोई मतलब जो है ना बॉलीवुड ट्रैक है या मतलब उस तरह का कोई ट्रैक है। सो मैं क्या बात कर रहा था जी, बात खैर जो है ना मैं क्या कर रहा था यार, मुझे भी बात भूल गई है, किस हाल से मैं बात कर रहा था, ओहो बात मुझे भूल गई है। चलें इस ट्रैक को भी साथ साथ चेंज कर देते हैं एंड वाला शामिल कर देते हैं।

अब लिसनर्स, मुझे आप दोस्तों से इजाजत लेनी पड़ेगी और मैं कुछ थोड़ी सी गुफ्तगु करूंगा, इसमें फल का एहतिताम करूंगा, इस प्रोग्राम का एहतिताम करूंगा। मेरे प्यारे, मेरे दिल के करीब सामीन, अब वक्त आ गया कि आज की इस खूबसूरत खामोश खुमार में डूबी हुई और एहसास से भरी महफिल को आहिस्ता आहिस्ता अपने एहतिताम की तरफ लेकर चलें। लेकिन जाने से पहले आज की पूरी गुफ्तगू से एक बात अपने दिल में जरूर लेकर जाइएगा कि जिंदगी सिर्फ वो नहीं है जो हमारे साथ गुजर चुकी है, जिंदगी वो भी है जो अभी हमारे सामने खड़ी है। जिंदगी सिर्फ वो चेहरा नहीं है जो कभी हमारे बहुत करीब थे, जिंदगी वो लोग भी हैं जो आज हमारी आवाज सुनने के लिए इस लम्हे रेडियो के साथ बैठे हैं। जिंदगी सिर्फ वो और आते नहीं है जिनमें हमने तन्हाई में आंखें खोलकर छत को देखा। जिंदगी वो सुबह भी है जो हर अंधेरी रात के बाद खामोशी से हमारा दरवाजा देखती है या हमारे दरवाजे तक पहुंचती है। हमने आज बात की जिंदगी के उन उतार चढ़ाव के हवाले से, उन अप्स एंड डाउन्स के हवाले से, उन लम्हों की जिनमें इंसान कभी पुरुष करते हैं और कभी अपनी ही जात के अंदर कहीं बहुत नीचे उतर जाता है। हमने उन यादों को भी छुआ जो इंसान को मौजूदा लम्हे से दूर ले जाती हैं, उन लोगों को भी याद किया जो जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से नहीं जाते, उन बातों को भी महसूस किया जो जबान तक आते आते रुक जाती हैं, उन आंखों को भी समझने की कोशिश की जिनमें आंसू नहीं होते मगर पूरी एक दास्तान छुपी होती है। और शायद आज की सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान को अपने माजी से लड़ना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसे एक जगह देनी चाहिए, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी का घर माजी में नहीं बना लेना चाहिए। कभी कभी हम अपनी बकैया जिंदगी एक ही दुनिया में गुजारने लगते हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं होती है। हम किसी शख्स से जहन में बातें करते हैं, पुरानी गुफ्तगू दोबारा दोहराते हैं, वो जुमले सोचते हैं जो कभी कहे नहीं गए, उन सवालों के जवाब तलाश करते हैं जिनका जवाब शायद जो है ना कभी मिलना ही नहीं था। फिर अचानक हमें एहसास होता है कि जिस जिंदगी को हम यादों में तलाश कर रहे हैं वो जिंदगी तो हमारे सामने से गुजर रही है। घड़ी चल रही है, मौसम बदल रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, शामें ढल रही हैं और हम एक ऐसे कल के दरवाजे पर खड़े हैं जो वापस आने वाला नहीं है। मेरे अजीज सामीन, हकीकी जिंदगी में वापस आना ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएं। नहीं, कुछ लोग भुलाए नहीं जाते, कुछ लम्हे मिटाए नहीं जाते, कुछ मोहब्बतें खत्म नहीं होती, कुछ जुदाइयां इंसान के अंदर हमेशा एक जगह रखती हैं, लेकिन जिंदगी का हुसन शायद जो है ना यही है कि हम यादों को अपने दिल में रख कर भी आगे चल सकते हैं। हम किसी को याद करके भी मुस्कुरा सकते हैं, किसी की कमी को महसूस करते हुए भी अपने आज को संवार सकते हैं, अपने माजी से मोहब्बत कर सकते हैं मगर अपने मुस्तकबिल को माजी के हवाले नहीं कर सकते। यादें हमारे साथ चलें तो खूबसूरत हैं, लेकिन अगर वो हमारे कदम रोक लें तो फिर हमें अपने आप से पूछना होगा कि हमने जिंदगी जी है, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं कर रहे हैं। और जरा तसव्वुर कीजिएगा कि एक लंबी रात गुजर चुकी है, खिड़की के बाहर आसमान अभी मुकम्मल रोशन नहीं हुआ, कहीं दूर किसी मस्जिद से फजर की अजान की आवाज बुलंद होती है, सड़कें जो रात भर खामोश थी आहिस्ता आहिस्ता जागने लगती हैं, चाय के कप से उठती हुई भाप फिजा में
खुल रही है, कोई मजदूर अपने काम की तरफ निकल रहा है, कोई बच्चा स्कूल की तैयारी में है, कोई माँ अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही है, कोई शख्स शायद रात भर किसी को याद करने के बाद आज पहली मर्तबा उससे ये कह रहा हो कि बस अब मुझे भी जीना है, यही तो जिंदगी है। किसी के जाने के बाद भी सूरज निकलता है, किसी ख्वाब के टूटने के बाद भी रास्ते बाकी रहते हैं, किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद भी दिल धड़कता है और किसी तवील रात के बाद भी सुबह अपना रास्ता ढूंढ लेती है। सो मेरे प्यारे लिसनर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में यानी कि ताहिर जमान की दुआओं में आप हमेशा हमेशा शामिल रहेंगे। जहां रहिए, जिधर रहिए, खुश रहिए, तल्दी पाकिस्तान यानी कि हमेशा रहे पाकिस्तान। द अल्लाह पामान एंड